0: छाप किसे दे किचने सब चले चला जिन तू मेले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए
1: जन्नत
0: नानक सतगुरु भेटे हर नाम तेरा।

0: सुनत्या वंजे ते अलख नाम करता
1: सुनत्या वंजे ते अलख नाम करता सुख मूल
2: नाम रंजन काया काका सत्या मन से दुख बजे देने के विचार
1: मंगा सा सगुणा सो कर संसार तोरा हजारा ए गुड़ियारा खराब बेकार एक हुंडा खाए चले अथाऊ तिना पिकाई का
0: जल चल जिया पूरिया लो आकारा का
1: नानक भगता पुख सलान सचनाम आदार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

0: बस बस तंगे मुकुरमा है जैसे छाय तैसे गी हर बसे नरंत कटकी फोटो बाई बाहर भीतर एक
1: दान
0: एक गुरु ज्ञान बताई जन नानक गुरु आपा जी ने
1: जन नानक गुरु आपा जी ने
0: मिटे न परम की काई
2: मैं मूर्ख जान

0: पर भी तुर्की पारसी हो कहू पहल विपस्त विशेष करते कहू देश
1: कहू राज विद्या।

जीव आत्मा दे पास केड़ी वस्तु पहुंचदी है? हजूर कहंदे गुर का बचन बसे जी नाले। ए जीव आत्मा तक पहुंच सकदा है गुरु दा बचन। गुरु दे बचन तो भाव है गुरु दा शब्द, क्योंकि हर पवित्र आत्मा दरगाह विच बैठी हुई अपने प्यारियां पासों मित्रों पासों ए मंग करदी है। क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी ने भी ए मंग कीती है, मेरे मित्रों ऐ मेरे प्यारियों, संमत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असीसड़िया। के असीसा केड़ियां हन? हजूर कहंदे ने मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जीओ। वेखना भाई मेरे पिछों किसे ने रोना नहीं, दुख नहीं मनाना। जे मेरे नाल सच्चा प्यार करदे हो तो मैं पिछे मेरे पिछे कीर्तन करना। मेरी याद में मैनू असीसा देनिया कीर्तन दिया, क्योंकि कीर्तन दिया असीसा ही जीव आत्मा तक पहुंच दिया हन। इसलिए हजूर कहंदे ने संमत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असीसरिया। जे पुन होन तां पापा दा पार हलका हो जांदा। कीर्तन ही है जो पापा दी निवृत्ति कर देंदा। गुरु दी शरण विच आके उसका जश करना यही दात एक नाल जांदी। गुरु दी शरण विच आ जाना बड़ी वड्डी गल है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह घट घट दे जानन हारे परमेश्वर दा रूप अज एक अलोकित आप चोज वरता रहे हन। सच्चे पातशाह जी दी उस्तति सुन के एक बैरागी वैष्णो मत दा साधु दर्शनां लई आया। आके की वेखदा है कि सतगुरु जी दे हाथ विच गुटार पंछी है, दूजे हाथ विच बाज फड़िया होया है। उस बाज ने गुटार दे मास नूं त्रोड़िया है, फिर दोबारा तोड़िया, बल्कि जद तीजी वेरा गुटार दे मास नूं तोड़िया तां बैरागी दे मन विच बड़ी शंका आई कि मैं तो सुनिया सी कि सतगुरु शांत मई दयालु अते दयावान हन, पर इना दे चित विखे तां बड़ी कठोरता है। रंचक मातर भी दया नहीं, गुटार तड़प रहा है ते जीउंदे गुटार दा मास बाज कोलों तुड़वा रहे हन। अंतर जामी सतगुरु जी ने साधु दे हिरदे दी शंका जान के वचन कीता, हे संत जी, आप जी दे मन विच जो संशा उठिया है ना, आप नहीं जानते कि इना दे पिछले जन्म दा की संबंध है। ए जो गुटार है राजी दा वजीर सी, जो बाज है ए पिछले जन्म विच वड्डा जिमीदार सी। जिमीदार ने अपना पिंड वसाया होया सी। इस वजीर ने झूठी तोहमत लगा के इसनू पिंड तो बाहर कढवा दिता, पिंड उजाड़ दिता, पर अपनी मेहनत और सच्चाई दे सदके इसने एक होर पिंड वसा लिया। वजीर ने फिर ईरखा करके इसका पिंड उजाड़ दिता। जिमीदार ने साख संबंधियां दी मदद दे नाल, अपने मित्रां दी मदद दे नाल, अपने रसूख नाल फिर एक पिंड वसाया। पर राजे दे वजीर ने वैर भाव रख के तीजी बार भी पिंड उजाड़ दिता। क्षमा पा के इन्हां दोनों दी मृत्यु हो गई। जिवें बाणी विच लिखिया है, जेहा बीजे सोधणे करमा संदड़ा खेत। ज्यो ज्या कोई बीज बो के जांदा, ज्यो जे कोई कर्म करके जांदा, निरंकार उधर ही पेज देंदा।
ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 84 ਦਾ ਗੇੜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਗੁਟਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਮੀ ਦਾ

जन्म में इसका मास खावांगा ताए मेरा बदला चुकेगा। इसने तीन वेरा मेरी नगरी उजाड़ी है, मैं हूं तीन वेरा इसनू खाना है, मेरा हिसाब पूरा होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई ये गुरु नानक दी शरण विच हुण आ गया, इस लई इस शरण दा भी तां कोई लाभ है ना। जो तीन जन्म विच बदला चुकाना सी, असी एक ही जन्म विच इन्हां दा बदला चुका रहे हां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु, इसे जन्म विच मुका दिता है इन्हां दा हिसाब। हुण ये दोनों ही इस जूनी तो मुक्त हो गए। सतगुरां ने फरमाया कि संत जी जिहो जिहा मनुच्छा जन्म प्राप्त करके कोई बीजदा है, वो उसनू भुगतना ही पैंदा है। वो बैरागी मत दा साधु जो सतगुरां दी शरण विच आया सी, चरणों ते डिग पिया, बेनती कीती, महाराज असी फर्शां ते रहण वाले कलयुगी जीव हां, रब्बी रमजा नूं किवें समझ सकते हो? असी नहीं समझ सकते आप दीआं रमजा। आप समर्थ पुरख हो, बख्शिश करो। मेरा आउण वाला जीवन सेवा सिमरन परोपकार अते आप जी दे चरणां विच बतीत होवे। सतगुरां ने मेहर दी दृष्टि तकी, क्योंकि सतगुरु जी दा वचन है कि पापां दा फल तां जीव नूं भोगना ही पैंदा है। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार किसे नूं ऐसे ही जन्म विच दे दिंदा है फल, किसे नूं दूजे जन्म विच, किसे नूं तीजे विच, पर इह तां भाई पापां दा फल तां भोगना ही पैंदा है। ते जो प्रभु दा सिमरन है, प्रभु दी शरण विच आ जांदा है, तां इह समां सुते ही निकल जांदा है। इह समां सुपना बन के पूरा हो जांदा है जो गुरु दी शरण विच आउंदे हन। इसे लई धन गुरु नानक पातशाह कह रहे हन, देव सज्जन असीसरियां जो होवे।

पर वो समा सफल है जदों चित आवे श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास आके ब्राह्मणा ने बेनती की, महाराज जिस तरह शास्त्रां विच शुभ अशुभ दिन गिने जांदे हन आप दे मन विच भी हन, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे हन भई साडे मत विच तां ओ मौसम, ओ समा, ओ दिन, ओ घड़ियां, ओ पल सफल हन जदों परमेश्वर दा नाम चेते आ जावे। पले दिवस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ वेला को हों बल जाऊं, जित मेरा मन जपे हरि नाम।

वो कदम सुहागने हैं, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब।

0: सतगुरु।
1: जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहु को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावह जंको, शिव मन गहना तजात कविलास को, जंको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

गुरु साजी से निवाजी शास्त्र जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच परम दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनु असीं ऋषभ कहने हैं, सा तो बाद दूसरा स्वर रे है, उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसनु पा कहने, सारे गामा पा, पंचमा स्वर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हों दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नू महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिकते बांग तागड़ी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया, तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने, सरगमां लगानियां और ताना लगानियां। कुम किरना नाल दे दे ताल, दागर दी दे दे ताल, कि तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नूं राग विच ताल विच गायन करना, इस नूं कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ, बाणी पढ़ी जाओ, वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना, नाल पलटे लगाओ, सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

केस नहीं कटाने आखो सतनाम दौड़े दूसरा सी पिछल रात जागना कि तीन बचन मरदाने ना लैके शर्त करके फिर तोरिया जीवन सा पिछे जे कई शरीर दास नूं कहण तुसी बाकी कीर्तन बुक कर लैंदे हो नावां

अज कल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पिया सौदागरी करना पिया उस तो वेल नहीं। बेटा तू कि सौदागरी करना पै मैनू तो वेला ही नजर आ और ना तेरिया गल्ला समझ आउंदियां ने।

जे होर कोई कम नहीं करना तो नौकरी कर ले। तैनू मैं कोई नौकरी दिवा दूंगा हां।

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलती हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर चुलकाई, उन्हें इंसानों नु दुखी वेख्या सी कारू दे राज विच, भुखी वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

Maya. और पंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनु सजाए मौत हो जाएगी। कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जदों कोई पैसा ना आया

सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। तां किसी ने एक सलाह दिती कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेख्या कि किसी कोल भी पैसा नहीं, तो एक नौजवान मन चला अपनी मां के पास जाके रोन लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा है ते बादशाह दी बेटी का रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तो उम्र गवाई है, इस राज विच कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तो गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तू क्यों उम्मीद करदा है, झूठी गल ते इतबार ना करदा। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रखिया हो, बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता नूं दफनाया सी तां उस दे मुंह विच इक पैसा रखिया सी, कबर खोद लै उस दे मुंह विचों कढ लै, ओ तां हुण रस्म पूरी हो गई, जे ओ तैनूं मिल जावे। कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दित्ती, उसने मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया, उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

कुछ देर बाद फिर आए। उसके पुत्र मेरे पूछया भाई वो बैल किथे, कह लगे जे तुसी गए तो दूसरे दिन चढ़ाई करेगा। यह गुरु जी का कौतक, उसका बेड़ा पार करना सी, नहीं तो पता नहीं कितने कितने बरे बैल दियां जोना भोगदा, कितनिया चोटा खांदा भाई। सच्चे पातशाह टुट पए से, उस खा मखा पार करने वाली गई जिसने सतगुरु

की चढ़ाई कर गया मर गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि हुण तां घर अंदर कुत्ता बन के पहरा दे गया, बैल जोन तो कुत्ते दे जोन चा गया। मरदानिया हुण तां आपां नूं घर जाना पवेगा, क्यों गरीब नवाज मरदानिया हुण तां ओह बिरग कुत्ता बन के पहरा दिंदा है घर विच रहिंदा। चल पे घर आए प्रशादे की बुरकी पाई, कुत्ता नेड़े आया। गुरु जी ने सिर ते हर्ष रखा, उसने सोझी हो गई कि मैं कौन हां ते ये कौन हां। गुरु जी ने आख्या क्यों गई, मोह दियां चोटां खांदा खांदा इतनी गंदी जून विच पहुंच गए, हुण तेरा पार उतारा कर देई। उसकी आत्मा चो आवाज आई, मैनू हाले मुक्ति की लोड़ नहीं, ये मेरे पुत्र बड़े अवेसले ने, ये बड़े अवेसले ने पुत्र मेरे, दिन भर रात सारी सुते रहिंदे ने, अद्धे दिन होए तक जागदे ने, पिछवाड़ा नंगा है, चोर तां एक रात च लुट के लै जाण जे मैं पहरा ना दे। सारे बजुर्गां नूं ऐसा ही खदशा रहिंदा है, भावें कोई कुत्ते दी जोन विच जावे जा ना जावे, पर मनुष्य जामे विच ही पहरा ही तां दिंदे ने कई बजुर्ग। पुत्रां धीआं नूं वेल नहीं कह दिंदे ने बच्चियां दा ध्यान रखना, फिर कह दिंदे ने हुण बच्चियां नूं छुट्टियां ने, असीं घूम फिर आईए, तुसीं घर ख्याल रखना। पहरे तो सिवा ड्यूटी केड़ी रह जांदी है, पहरा ही दिंदा है। पर ओहो जे बजुर्गां नूं वी कहीए कि हुण नितनेम करिया करो, तां उहनां दे पास वी समां नहीं। क्योंकि इन माया जग मोह। गुरु जी कहण लगे चंगा भाई तेरी मर्जी, होर चोटां खा ले। फिर गए, काफी समय बाद आए। गुरु जी ने पूछया भाई वो कुत्ता कित्थे जिहड़ा घर विच। आख्या जी तुसी गए ते थोड़े दिन बाद शरीर छड गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि कुत्ते तो मर के उसकी आत्मा एक सर्प विच प्रवेश की थी। सप बनिया होया सी, वो एक बार पंगूड़े विच खेल दे बच्चे वल जा रहा सी, पड़ोसियां ने मारिया। बाणी च लिखिया है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जी मरै, ऐसा चिंतन करद्या होया मौत हो जावे, पैसा पैसा सिमरद्या मौत हो जावे। तां कहिंदे ने सर्प जोन वल वल आउंदा है, उसनूं सप दी जोन लैणी पवेगी। ते दूसरी गल, गुरु साहिबां ने सहस्कृति दे श्लोकां विच ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦ ਵੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪ ਨੇ ਕੁਲ ਖਲ। ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੂਟਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਪ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਐਸੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ जिसने गुरु नहीं धारण किया। भाई गुरु भी धारण कर, जितनी देर गुरु नहीं धारण कर दे ता सिखी नहीं कमा सकते। सिखी की रहत मर्यादा उस दिन शुरू होगी जदों तुसीं पहला कदम रखिया, अमृत छक लिया, गुरु धारण कर लिया। अमृत भी छकाया जाना है, अमृत छकाने वास्ते अपने नाम

गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंदरी विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धा ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा दी कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारिया नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। ओ परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख नरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाखीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तां उहदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकदे हां उहदे अगे। तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहण लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकाग्र चित होके मुंह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल करदा। किसी धन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी। धन गुरु नानक पातशाह

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होया। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा है। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना, आनंद माणना, क्योंकि ए भी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नूं खुराक दी लोड है, साडी आत्मा नूं भी परमेश्वर दे नाम दी लोड है। ओ नाम दा भोजन शक्ति है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनूं ही भोजन दी भुख लगदी है। पर ओ भोजन नाम दा शक्ति है। उचारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं होंदा। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझिया भई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है, आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे कम नहीं है।

नानक सच्चे पातशाह अपनी कृपा करन, क्योंकि उदी कृपा होंदी है तां गुर मंत्र दा सिमरन दा जाप हुंदा है। सिमरन दे नाल प्रीति दिनों दिन वधदी जांदी है, परमार्थ विच बरकतां पैंदियां हन तां ए दात मिलदी है। सोए अचिंता, जेड़े प्रभु दा सिमरन नहीं करदे उना लई भी हजूर कहंदे हन, लाज मरे जो नाम ना लेवै, नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। एक पासे नाम तो बिना हजूर कहंदे हन, भाई सुख दी नींदर किवें तू सौ सकदा, किवें तैनू खुशियां प्राप्त हो सकदियां। दूजे पासे जो जपदे हन, जो करदे हन वाहिगुरु दा शुकराना, हजूर कहंदे हन, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां तहां प्रभ तू वरतनता। ओ फिर अकाल पुरख वाहिगुरु नू सदा अंग संग समझदे हन, ते जिन्हां ने अंग संग समझिया उन्हां नू लोक परलोक दे सुख वाहिगुरु बख्श देंदा है।

गुरु हरकृष्ण साहब ने छज्जू चीवर नो सोटी लाई, उन्हें गीता दे अर्थ कीते, शरदा है तो ठाकता। गुरु हरकृष्ण साहब ने एक छज्जू चीवर नो सोटी लाई, ज्ञान दिता। कुछ समा होया अख खुली, अर्थ किराए ज्ञान दिता। नहीं, जिस स्थान ते सोटी लाई, जिस जगह ते मुबारक चरण पाके एक कृपा कीती, आज भी शब्द रूप विच गुरु हरकृष्ण साहब उथे विराजमान ने। सरोवर भी बनया, गुरुद्वारा पंजोखरा साहब अंबाला छावनी, ते पता नहीं किन्नियां मावां दे बच्चे जेड़े पढ़ाइयां चो ढिले ने, ज्यों ज्यों उथे जांदे ने श्रद्धा भावना नाल, अज भी सोटियां ला के ते गुरु हरकृष्ण साहब शब्द रूप विच विद्या दा दान झोली जांदा। आ है सतगुरु मेरा सदा गया ही आई, जिथे जो जो कुछ कौतक वरताया, ए नहीं के उत्थों काम खत्म हो गया, ओने कौतक ओनी कृपा नाल शब्द रूप विच फेंक गया। हकीकत जे हकीकत, साडा एक मुंडा सी ते ओनू किधरे काम भेजो ना तो खराब करके आना, 100 चो 70 वारी। मैं क्या तेन समझ नहीं आती, तेन जिधर भेज दिया कि 100 चो 30 जगह से सही कर रहा, मैं 70 जगह उन्हें दोवे हथ करके रो पिया। कहिंदा जी मैं की करा, मैं अपने वालों करदा सही हां, पर हो ही नहीं जांदा, कोई ना कोई गल मुंह कच्ची पक्की कर दा। एकदम दिमाग खड़किया, इन्हें झिड़कां नाल राजी नहीं होना। मना मूर्खा, वाजे ते बह के कथा सुनाउना, वो फार्मूला वरतदा क्यों नहीं? एकदम दिमाग जो नहीं आया, साल नहीं आया, उन्हें जो बेचारे ने वैराग कह रहे नहीं की करा, मैं अपने लो सही करदा, फिर वो कच्ची पक्की गल निकला दी, 100 चो 70 गल खराब। मैं क्या भुल साड़ी है कि गुरु घर विच कृपा

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोचना

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है।

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादी।

गावह तोहनो पौन पणी बैसंतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित्त गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईतनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, आसन

भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला, चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

पहला यानड़िए मानड़ा काय करे हैं अपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं सौ नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं पैकियां देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जा सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अजंज है, अमीख है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है।

त्रिभर्गं त्रिबाद्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे। त्रिभुगत स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रवाह हैं, सदैवं सदा हैं। विभुगत स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं। चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, परम हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, आजाद हैं। चरपट क्षमता प्रसाद सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता रसावल क्षमता प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं। भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तल जुबां हैं कि साहिब किरां हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के मित्तो अपंग हैं। मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो। ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत तीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तब प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विसंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
नमो राजसं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्ं अततं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहाँ पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजित टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद अपजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को मृतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
ਕੋਵ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਵ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਅਸੁਰ ਕਾ ਕਾਠ ਸਮਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ਦੁਤੇ ਬਾਨ ਸੌਂਦੋ ਅਰ ਕਰ ਕਾਠ ਦਯੋ ਅਸਤੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ਪੁਨਰਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਪੁਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭਨ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹਲੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੁਪਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੂ ਕਰੀ ਅਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆਲਮ

0: सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक खोशी भी सच चकर के निर्वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग हरी पीत कुकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंजय पूज चिंदन इंद्राम शाहु शाहान गणिज फिर भ्रमण में ही सुनारा सुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना समना देवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल का श्रद्धा पूरी सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दया सतगुर हुई दयाल आना उन्हें पाया सतगुरु।

अपने परत करें प्रतपाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई भाई जी का हस